रेडियो नेपाल ख नेपाल भाषा समाचार जीव उपेश पाखे निनादिस थौ नेपाल सम्बत चिन्छ सौ पिकुद यलागा तृतीया पेनियङ्क मधिक वगु वालिपा खुसीबा चल लख डुबिना लिचो लाबिन्त सुरक्षित नक्सा तेगु नाप सिङ्गु या त देखेगु व जनजीवन या त अपुगे त सरकार तिचिलाक्क ज्या याना चुङ्गु प्रधानमन्त्री व मन्त्र परिषद ज्याको धागुदो थो पेनुया झाक्या लाना देजिङ्क निन हेम मुनु त सिगु नेम खापा जुगु व पेम तनाचुङ्गुदो थोइले न्यास व चिन्सोगु झाका लाना दोची व खुइन्याम छेज पिन्त तपिङ्क लिचो लाकुगुदो खुसीबा व चलख थिथि राजमार्गे सचिव पी नेगु थासे सडक सिङ्गुली सचिव निन्यागु थासे देखेको ज्या ज्याचुङ्गु धागुदो खुसीबा या हुने कालीगण्डकी मर्स्याङ्डी व सेती मादी कोरिडोर नाप थिति प्रसारण लाइन दोची व चिन्सुङ्गु मेगावाट मत मवगु ख आ सुङ्गुली प्रसारण लाइने पेस व नियनीको मेगावाट या केन्द्र ह्यानाचुङ्गुदो नेपाल टेलिकम या चिन्छ व सुनिगु टावर या नेटवर्क वगु पङ्ग या त जेङ्केको झोले नेस व चेनिगु न्याकुगुदो एनसिएल या सचिव खुइनिगु नेटवर्क सिङ्गुली आ सचिव न्यागु देखे थङ्कुगुदो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल या त राष्ट्रिय समावेशी आयोगका कार्यवाहक नायक हरिदत्त जोशी आयोगका प्रतिवेदन न्यवादिगुदो राष्ट्रपति पौडेल या त वेकल राष्ट्रपति भवन गोसागोको छगु ज्याजोले नेपाल या संविधान कथ आयोग या आर्थिक द 2082-83 या प्रतिवेदन ललहान्दीको ख एसियाली पूर्वाधार लगानी ब्याङ्क एआइआइबी या नुकु पदे नेपा या त लियगुदु कतार राजेन दोहा न्यानाचुङ्गु ब्याङ्क या गभर्नर परिषद या चिन्छकोगु द मुज्या नेपा या त नोकु पदे लियगु ख अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्ने थो भाला औपचारिक रूपमा पाफया दिगु वेक या सचिवालय धागुदु पूर्व प्रधान न्यायाधीश या त चाने छेउना प्रहरी याङ्कुगु झाक या त कया सर्वोच्च अदालत गम्भीर ध्यानाकर्षण यागुदो असोज 10 गते पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलन शमशेर राणा या त नेपाल प्रहरी अधिकारी तेस छेपाखी याङ्का टेकु याङ्कुगु खा राणा या त थ्यामत चिगो तया हान वेक या छे लि त याङ्कुगु खा सर्वोच्च अदालत छगु विज्ञप्ति जारी यासी उगु कन्या या त कया ध्यानाकर्षण याकुगु ख नेपाल या संविधान लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली या मौलिक मूल्य रूपे स्वतन्त्र निष्पक्ष व सक्षम न्यायपालिका त आत्मसत यागुदु अले पूर्व प्रधान न्यायाधीश पूर्व न्यायाधीश व न्यायाधीश व न्यायिक कर्मचारी स्वतन्त्र न्यायपालिका या अभिन्न अङ्ग ख सोमबार चुङ्गु आकस्मिक पूर्ण बैठक लिपा जारी यागु विज्ञप्ति थथे नेटना तगुदु थौ असोज 13 गते मङ्गलबार ए या नख या झोले मिसा तेस जक रथशाला नानीचा झ्याकी थौ हे बहनी राष्ट्रपति राम पौडेल हनुमान ढोका दरबार छाया कुमारी पाखे सिन लिसे प्रसाद ग्रहण यानादि सिन प्रसाद ग्रहण यादुङका राष्ट्रदेश कुमारी लिसे खड्ग हिलाकाइगु परम्परादु बहनी सिया गुत्यात्या इले यो सिंह कोथले ढुङ्का छवा सिया ताहाकुगु ए या कोचाइ यो सिंह कोथले ढुङ्का उकिया त टेकु दोबाहन ने बागमती सिथे च्याकिगु परम्परादु नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समिति पिकागु साहित्य यो सिंह नीति सीमा पालेत वन यात्रा या ढुङ्का थो जात्रा प्रक्रिया यागु ख बुधबार यो सिंह थङ्गु ख थोए जोले वा व सकाल या दो कथ पूजा याइम इन्द्र या त विधिपूर्वक पूजा आज याना थो नख हना चुङ्गु ख जात्रा या झोले लाखे प्याख दश अवतार प्याख महाकाली प्याख रामचन्द्र प्याख पुलुकिसी प्याख लिसे सांस्कृतिक झाँकी व मेहालीगु परम्परा दो यहाँ या झोले शुक्रबार श्री गणेश श्री भैरव श्री कुमार या रथ यात्रा दोथुपाखे कोने यहाँगु ख सोमबार सुधे येल महानगरपालिका 24 वटा थापाखेले सोतजागु छे कोदगुदो सोभित कुमार थापाया उगु छे सोमबार सुथे कोदगु येल प्रहरी प्रवक्ता गौतम मिश्र जानकारी ब्यादिको ख जोखिम बेलाचुङ हुने छेथुवा या त मिक आइतबार हे छे तोते त इनाप यागुली मानवीय क्षति धासा मोजुगु प्रवक्ता मिश्र धाइदिगुदु तचो क वा ओगु हुने जमिन प्यागुली
पालुगु सतले देकातोगु छे कोदगु मिश्रिया धापुदु छे कोद धङ्का छे कुए चुङ्गु चिकुसी न लागु प्रि धागुदु ए महानगरपालिका 18 वडाया गोसले न त तुलादर समिति गुलाबाजा उपसमिति या व्यवस्थापनीय वैगु असो 24 गते शनिबार खुनु राष्ट्रिय सभागृहले निकोगु मिसा गुलाबाजा बोजिया जुइतेङ्गुदु 18 वडाया वडा अध्यक्ष नुसिकाजी मर्जन या सभापति जुगु जियाजुले नौनादिसे वेक्ल मिसा बाजा थाइपिम हो जुया चुङली गुला बाजा थाइपिन त प्रोत्साहन यागु कथ थो बोजिया या तिनागु ख नेतना दिल थगु सम्पदा थपिसे कुबिया मचुनेगु खसा सम्पदा धना उनीगु ख ध्यादिसे वेक्ल मिसा पिन्त बाज सेन धासा सम्पदा लिङ्कु ज्या अझ तिब जुइगु ख धया दिल मदिक वा वयाचुङ्गु नाप्लप च्वापु गाना हुम्लाया जनजीवन मिगन प्रभाव जुगु दु जिल्ला सदरमा सिमकोड लिसे अप धाइ थे थासे फोन लिसे इन्टरनेट सेवा नाप अप्रुद जुगु धागुदु प्रतिनि सभाय मुज्या थौन चुनि तेङ्गु दु सुथे चिता इले चुनिगु मुज्या प्रधानमन्त्री बालन शाह या पाहे कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सविता गौतम राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक न्यवैगु ज्या दलदु मुज्या वेक्ल छु नेपाल एन या व्यवस्था मकेगु विधेयक या त विचार या धैगु प्रस्ताव न्यवैगु ज्या दलदु अथे मुज्या शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति या सभापति अजोशी स्वेचन राष्ट्रिय सभा बोलङ्गु राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला पलिस्ता व सञ्चालन विधेयक सम्बन्धी समिति प्रतिवेदन यौगु ज्या धलदु अथे पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साला डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद विधेयक यौवै धासा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक ज्ञात विचार या त प्रस्ताव तयादि थौए अर्थ समिति व सार्वजनिक नीति तथा प्रत्याजित विधाय समिति या मुज्यान चुनितेङ्गुदु प्रतिसभा मुज्या सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नापाङ्गु संशोधन विधेयक या त विचार यागु प्रस्ताव मिग सर्वसम्मत स्वीकृत यागुदो अथे महिला बालबालिका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी छु नेपाल एन संशोधन यागु विधेयक विचार या धैको प्रस्ताव न मिग स्वीकृत जुगु ख राष्ट्रिय सभा मिग या मुज्या सांसद पिन्स विपद व्यवस्थापन नीति निसोङ्गु संसदीय समिति राष्ट्रिय सभा त क मघागुली स थोका दिगुदु स थोकेगु झोले नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका सांसद मिना सिंह रखाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद जयन्ती देवी राई जनता समाजवादी पार्टीका सांसद मोहम्मद खालिद अथे सांसद पी चन्द्रबहादुर केसी विष्णुबहादुर विश्वकर्मा सोमनाथ पोर्टेल भुवनबहादुर सुनार थथे सथ्यकादिको ख रसुवाया टिमुरे डिजेल जेनेरेटर ह्यानाचुङ्गु नेपाल टेलिकम या टेलिफोन टावर सरवाल प्रणाली तगुदु नेपाल विद्युत प्राधिकरण या विद्युत सेवा ताई तक मौवै गुली नेपाल टेलिकम चिन्नीगु किलोवाट क्षमता या सोलर प्रणाली तगु ख वैदेशिक लजगाय नीति स्लोभानिया व मालदिव सोयाबी धका गुइपेङ्गु लाख ठगे यागुली निमेषित नेपाल प्रहरी जोङ्गुदु मिग धादिङ्गा ईश्वर खतिवडा व लम्जुङ्गा खरवा तामुङ्ग्या त जोङ्गु ख मनु धु ल्वापु जेङ्गे त धु संरक्षण केन्द्र पलिस्ता जुइतेङ्गुदु राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष एन टिएनसी नेपाल व संयुक्त राज्य अमेरिका या कोलोराडो डुगु द वाइल्ड एनिमल सेन्चुरी दोथी मिग अमेरिका सम्झौता जुगु ख सम्झौता कोष या दुज छ्यान्जे डाक्टर चिरञ्जीव प्रसाद पोखरेल व द वाइल्ड एनिमल सेन्चुरी कार्यकारी निर्देशक प्याट क्रेग लाचिङ तयादिगु ख लाचिङ ज्याजुले नेपाल या प्रधानमन्त्री बालन शाह या स्वकीय उपसचिव प्रकृति ठकाल बोटी कैदिगु ख नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्ड अन्तर्गत चितवनया सिमलताले ने छगु मिटर सडक चोटुया वङ्गुली छखेर यातायात ध्यानाचुङ्गुदु सडक डिभिजन भरतपुर या सूचना अधिकारी इन्जिनियर कृष्ण प्रसाद आचार्य अनवाचाका जक सडक छेले त इनाप यानादिगुदु
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग खाद्य अनुसन्धान अधिकृत अर्जुन अधिकारी नापा पेमसित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर यागुदो आयोग प्रवक्ता सुरेश न्यौपा न्याय कथ अधिकारी विरुद्ध नि च्यागु लाख दा भ्रष्टाचार यागु दासै मुद्दा दायर यागु ख अथे रूपन्देही बुटवलिया बसन्तकुर बस्न्या छेत्री अथे कैलाली गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर छ या सुरेश चौधरी ओ दोलखा मेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर छ या रश्मिता श्रेष्ठ यातन मुद्दा दायर यागुदु अमेरिका ओ चिन स्विगो अर्ब अमेरिकी डलर या हलजोल या भन्सार हो यागु धल पिकागुदु थुकी निगुली दे या निगुली दे या त स्वापु भिनिगु धागुदु वासिङटने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प व चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ दुई नाप्ला ढुङ्गा छु नि लिपा थो धल पितब्युगु ख दक्षिण अफ्रिका छगु बारे गोली केका चिन्च्याम सिगुदु जोनेसबर्ग चेगु किलोमिटर तापागु बार्मा स्ट्रे छाका जुगु ख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प थगु प्रशासन इरान यात्रा प्रतिबन्धे राहत व रोक्का यागु दालित बिगु प्रस्ताव यागु धैगु हुइना फिना जको जुगु नेता दिगुदु थोएदुति इरानी विदेश मन्त्री अब्बास अराग्जी न्युयोर्के कतारी मध्यस्थकर्ता पाके अमेरिका व इरान दोति ह्याक्न अप्रत्यक्ष सल जुयाचुङ्गु नेता दिगुदु वेक्ल शान्ति सल या विशेष अमेरिकी पक्ष औपचारिक लिचो मङ्गलबार तक वैगु तुकमा नाप यना दिगुदु थौ देन्याङका बच्चा खसु खनी दे या हिमाली व पहाडी लगाए छगुनीको थासे बच्चा वा वैगु चुवापु गाईगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग थागुदु सोनिगले मिग नि च्यागु फुटी निगु डिग्री सेल्सियस क्वाज लुगु खदासा कोया या क्वाज चिन्यागु फुटी निगु डिग्री तक कुहा वगु ख थौ मिग थे क्वाइगु धुकमा यागुदु नेपाल भाषी बुख कोचाल सुभा।

लासो फ्याफुल्ला तिनी मन्जुश्रीसम्म त 2862 तालु मेनिङ लाला छेपा छुइसे भ्रे विक्रमसम्म 2083 साल असोज लाला छेपा छुइसे सोम मेरे मङ्गलबार छु रेडियो नेपाल हिन्न तामाङ साङ्गुरी राङ्द डेनमुला ना सूर्य मोक्तान काइब्लोन बानेन्द्र साहसे नाम ताबारी खासी जिम्मा बुसाइनुन् थेसे ठुङ्नालाबारी खाम्बा विपतला खतरा आथुम्बा थिन जोखिम ताबारी खाम्बा से बिरानी हुल्बा द सतर्क ताबारी मैजेला शुभमला ग्रे नाम ताइसे प्रभावित ताबाई हुल्बा द सुरक्षित व्यवस्था माबामुला थेतुइरी ग्यारजङ्गा गोरचुइसे सुम मनसुन से ठुङ्नेलाबा घटना ग्याम तोङ्गिक से गोर डुचुइसे गा दिम थेमे प्रभावित तापमला चुनर गुङ्री काइब्रन बालेन्द्र साहसे नेपाल थिन भारतलाई गुङ्री खामेदामा ज्याप ब्रेलबा तापन खापमुला विशेषण शुभमुला डाङ्ला गे दुई थुम्सी ए बारी छेपा नेपाललाई भारतलाई ग्लेबन नवीन श्रीवास्तव से काइब्रन थिन ब्लोन्सेङजाङला गे दिम्री दोषी खापे बिमा लिच्छला रूप तापताङ्री काइब्रन साहसे क्युलो भाल डुई थिन विपतला दुईरी भारत सरकार सिलाबन खाबा रोला लागिरी विशेष थुजे छिदोन शुभमला काइब्रन साहसे ग्लेबन श्रीवास्तव दा गे दुई थुम्नलाबारी बधाई दोन शुभन खबरेला लुई जाबा तबरी खमगे बिसिनन जाबडन बदन शुभमला चुनावला से रोहिल चोहो राम सहाय प्रसाद यादव दानुन नेपाल दा भारत ला ग्लेबन श्रीवास्तव से खापे बिमाली छल रूप ता शुभमला प्रतिनिधि सभालाई तिनीलाई चिसाङ्री तिलाई नेपाल ठिम्दा तेनबारी बाबा विधेयक 2083लाई फेरि विचार लादुजी विवाह प्रस्ताव दा बहुमत से स्वीकृत लापमला चिसाङ्री काइब्रन बालेन्द्र साहला तर्फ ग्याम ठिम न्याय थिन संसदीय मामिला ब्लोन सोभिता गौतम सिथान्छुबा तिलाई नेपाल ठिम तेनबारी बाबा विधेयक 2083लाई फेरि विचार लादुजी विवाह प्रस्ताव दा सभासे बहुमत से स्वीकृत लापहिन्ना चिसाङ्री विधेयकलाई फेरि काटुइलाबा दुईरी रेबा प्रश्नलाई जवाब दोन्स्युमान ठिम ब्लोन गौतम से सरकार से बाबा सार्वजनिक दान दान ज्ञाम तेब सम्बन्धीलाई विशेष टिम अध्यादेश निष्क्रियतामा अध्यादेश सेसेङमान खाबा दफा गदे खाली तबसै थेदा ठिमलाई रूपले तेनमारी विधेयक बाबु हिन्न विशेष हुन्छ बर्मला चुनाव लसी प्रतिनिधि सभालाई तिनीलाई चिसाङसे राम राजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक 2083लाई फेरि विचार लादोजी विवाह प्रस्ताव दा सर्वसम्मति से स्वीकृत लाभमुला चिसाङ्री लुइथेन चाबासै स्वच्छता ब्लोन निशा मेहता सिथान्सिमा राम राजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक 2083लाई फेरि विचार लादोजी विवाह प्रस्ताव दानुन सर्वसम्मति से स्वीकृत लापहिन्ना चिसाङ्री विधेयकलाई फेरि काठुइलामा रेबा प्रश्नलाई जवाब दुन्सिबान ब्लोन मेहता से स्वास्थ्य शिक्षा थिन स्वास्थ्य सेवारी प्रादेशिक सन्तुलन डिग्नलाबारी थिन मधेश प्रदेशलाई हुल्मा दा राङ्लान प्रदेश रे गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा थिन विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पिनमारी नन् जो प्रतिष्ठान ठङ्दो बमुला विषय सुङ्छु बमुला चुरानुलासी प्रतिनिधि सभालाई तिनीलाई चिसाङ से राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2083लाई फेरि विचार लादोजी विप्र प्रस्ताव दानुन सर्वसम्मति से स्वीकृत लाभमुला चुपी बगाचा चिसाङला शून्य दुईरी सांसद गदेसे चुनुन असोजलाला भ्रे कुनु हेन्से चुइसे गिक्कुनु दोना ताइबा नामसे तानालाबा क्षति राहत बोलादोबा उद्धार लादोबा थिन प्रभावित गदेदा ज्यानलासी व्यवस्थापन लसी पिन्दोबा रङमा ताम्री सरकारला ध्यान छेङ्ने लाभमुला रोङसा ब्लोन शिशिर खनाल से लामन खाला लेब फेब द थुम्नालाबारी मोख्युल्ला हुल्बादा प्रभावकारी गेल सिपिनबारी मोइजै नसुपमला रोङसा ब्लोन खनाल से जातीय लेब फेबा तार्थेन म्लाङ्री लाबा लेब फेबा फिर्क्याप्ला युल्दा लाबा लेब फेबा थेन स्यान अन्याय दा थुम्नालाबारी मोख्युल्दा प्रभावकारी गेल सिपिनबारी मोइजन नसुपहिन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई ग्रेन गेदिम नियोक्री तिरिसङमा दुर्बान घोषणा थिन गे योजना ला घिचुइसे गाछ दिन्छन् ग्रेन स्तरीय चिसाङ्री लेङमा थान्छिवान ब्लुन खनाल से लेबा फेबा लाबा गेसे मिला क्षमता लेन लाबारी खाम्से टिबा आरेबिसे सुङ्छु बमला जनन गङ्ग्री रोङसा ब्लुन शिशिर खनाल थिन श्रीलङ्काला रोङसा रोजगार थिन पर्यटन ब्लुन बिजिथा हेराथ रूपता सिलिङमला शुभमला संयुक्त राष्ट्रसङ्घला ब्रेचुसे गिक्सा ग्रेन वाल्डी बुक किनबारी न्युयोर्की दोषीबा रोङसाब्लोन खनालसे साइडलाइन काठुइलाबा ताङ्री श्रीलङ्काला रोङसाब्लोन हेराथेन गुर्गी ह्युल पक्षीय काठुइलाबा हिन्ना
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय से खाबा नोर्दिङ 2083-84 द अर्बगिक करोड कुची से कु लाख चुई से डु से तोङ कुची से निस्ला बजेट स्वीकृत लाभ मला सिंहदरबारी मुबा स्याट ब्लोन खाङरी स्यार्थेन क्लाङमा ब्लोन्थेन विश्वविद्यालय ला रो कुलपति सस्मित पोखरेल ला चोहबाङ रेटीमा ब्लिचुई से सोम्छा वालसे रजिस्ट्रार प्राध्यापक डाक्टर पन्ना बहादुर थापा से थान्बा आय व्यय विवरण

यी सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास थिक विजय झासँग सुनल जा मैथिली भाषामा समाचार। सरकार संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानून के संशोधन तथा एकीकरण करबाक लेल बनल विधेयक संघीय संसद में पेश करबाक निर्णय कयलक अछि। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय सिंहदरबार में बैसल मंत्री परिषद बैठक से संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद में पेश करबाक निर्णय कयने नेपाल सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल के जानकारी दिलेन। बैठक से स्वास्थ्य सेवा सुधारक लेल अमेरिकी सरकार से प्राप्त होवला 20.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर बराबरीक अनुदान सहायता स्वीकार करबाक निर्णय सेहो कयलक अछि। मंत्री परिषद से पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत कमला ढलकेवर पथलहिया सड़क खंड गजाउड नदी साना जल विद्युत आयोजना तथा 40 मेगावाट क्षमता के बलेफी खोला जल विद्युत आयोजना निर्माणक लेल राष्ट्रीय वन क्षेत्र उपयोग करबाक स्वीकृति देलक अछि। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालक तालिम शिक्षाले गुलम तथा सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माणक लेल राष्ट्रीय वन क्षेत्र उपयोग करबाक सेहो स्वीकृति देलक अछि। बैठक सँ पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन 2055 अपाङ्गता भेल व्यक्ति के अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 संशोधन करबाक लेल बनल विधेयक संघीय संसद में पेश करबाक स्वीकृति देलक अछि। मंत्री परिषद सँ प्रशासन दिस 2 उच्च अधिकारी के बढ़ुआ तथा पदस्थापन सेहो कयलक अछि। ससचिव आभा श्रेष्ठ कर्ण के बढ़ुआ का गण्डकी प्रदेश के प्रमुख सचिव में पदस्थापन करबाक निर्णय भेल अछि। नेपाल इंजीनियरिंग सेवा दिस के डॉक्टर जगदीश्वर कर्मचार्य के बढ़ुआ का ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय के सचिव में पदस्थापन करबाक निर्णय कयलक अछि। प्रतिनिधि सभा के आजुक बैठक में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2083 ऊपर विचार कयल जा कहिक प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत भेल अछि। बैठक में प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री बालेन्द्र शाह के दिस कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सुविता गौतम प्रस्तुत केने राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2083 ऊपर विचार कयल जा कहिक प्रस्ताव सभा के सर्वसम्मति से स्वीकृत कयलक अछि। बैसक में विधेयक ऊपर उठल विषय के जवाब देत मंत्री गौतम सीमा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्र नीति के विषय गुप्तचर अध्ययन साइबर सुरक्षा लगायत के रणनीतिक विषय के प्राथमिकता के संग आगू बढ़ावा विधेयक आवश्यक रहल बतौलन। मंत्री गौतम इस सामान्य उच्च शिक्षा के लिए स्थापना कर लेल विश्वविद्यालय नहीं भर राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिरक्षा रणनीतिक अध्ययन आ सुरक्षा कूटनीतिक ऐके मुख्य कार्य क्षेत्र रहल बतौलन। विधेयक ऊपर के सैद्धांतिक विचार विमर्श में भाग लेत सांसद सब राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सुरक्षा निकाय के प्रभाव से प्रायोगिक विशेषता के प्राथमिकता देल जेबाक चाही। सिफारिश समिति में विज्ञ सब के सहभागिता सुनिश्चित करबाक चाही। साइबर सुरक्षा सूचना प्रविधि आ भू राजनीति जेहन बदल रहल सुरक्षा आयाम के विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में समेटबाक चाही सुझाव दिलन। विश्वविद्यालय के मुख्य मेरुदंड ज्ञान अनुसंधान हेबाक चाही पर जोर देत सांसद सब ऐके प्राज्ञिक स्वतंत्रता के जगह बनाब सरकार के ध्यान आकर्षण करौलन। प्रतिनिधि सभा के दोसर बैठक काल्हि आसिन 14 गते बुध दिन के 1 बजे बैसत। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल समक्ष नेपालक लेल भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव आई विदाय भेंट कयलनि अछि। राष्ट्रपति कार्यालय में भेल भेंट में नेपाल भारत बीच के द्विपक्षीय संबंध आपसी हित आ इच्छाक विषय में विचार विमर्श भेल छल। एहि अवसर पर राष्ट्रपति पौडेल अपन कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न करने प्रति भारतीय राजदूत श्रीवास्तव की बधाई देने राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता कृष्ण बहादुर शाही द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेख है। अहिना का उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव संग सेहो नेपालक लेल भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव आइलैंड चौड़ी स्थित उपराष्ट्रपति के कार्यालय में शिष्टाचार विदाई भेंट कयलनि अछि। उपराष्ट्रपति यादव राजदूत श्रीवास्तव के कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न करने प्रति बधाई दे दू देश बीच के ऐतिहासिक सांस्कृतिक आ मैत्रीपूर्ण संबंध के आर मजबूत बनाब पहुँचौने योगदान प्रशंसनीय रहल उल्लेख कयलनि। राजदूत श्रीवास्तव अपन कार्यकाल सम्पन्न कऽ कऽ स्वदेश घूर रहल छथि। उपराष्ट्रपति यादव नेपाल में किछु दिन पहिने ही आयल विनाशकारी बाढ़ के कठिन घड़ी में भारत सरकार द्वारा प्रदान कयल गेल मानवीय तथा विपद सहायता प्रति धन्यवाद व्यक्त कयने उपराष्ट्रपति के यादव के सचिवालय जनौलक अछि। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह नेपाल आ भारत बीच के संबंध सब दिन अहिना सुमधुर आ प्रगाढ़ रहित आयल बतौलन अछि। अपन कार्यकाल पूरा का स्वदेश घूरल नेपालक लेल भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में पहुँच कर विदाई भेंट के क्रम में प्रधानमंत्री शाह किछु दिन पहिने ही आयल बाढ़ भूस्खलन तथा विपद के समय में
भारत सरकार कैने सहयोग के लिए विशेष धन्यवाद व्यक्त कलन। भेट में प्रधानमंत्री शाह राजदूत श्रीवास्तव के कार्यकाल सम्पन्न कैने प्रति बधाई दैत आवे वाला जीवन के लिए शुभकामना दिलन। भेटघाट में भारतीय राजदूत श्रीवास्तव अपन कार्यकाल में दू देश बीच बहुत विकास परियोजना सम सम्पन्न भेल जानकारी करबैत नेपाल रहित काल सहयोग पहुँचेबा में नेपाल सरकार आ नेपाली जनता के सेहो विशेष धन्यवाद व्यक्त कलन। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल विभिन्न प्रकार के विभेद अंत करबाक लेल विश्व समुदाय थ प्रभावकारी कदम उठेबा लेल आग्रह कलने छ। परराष्ट्र मंत्री खनाल जातीय विभेद रंगभेद विभेद विरुद्ध के घृणा तथा प्रणालीगत अन्याय अंत करबाक लेल विश्व समुदाय के थ प्रभावकारी कदम उठाबा आग्रह कलने छ। दुर्बान घोषणा तथा कार्ययोजना के 25वां वार्षिकोत्सव के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय न्यूयॉर्क में आय आयोजित उच्चस्तरीय बैठक के संबोधन करते मंत्री खनाल विभेद आ बहिष्करण अखनो मानव क्षमता के विकास में बाधक रहल बतौलन। ओ प्रविधि के विकास संगे पूर्वाग्रह डिजिटल क्षेत्र में आ कृत्रिम बौद्धिमिकता में होबय वाला एल्गोरिदम के बायस आ रूप में सेहो देखल जा रहल चर्च करत ओ हुनकर सचिवालय जनौलक अछि। नेपालक लेल दुर्बान घोषणा के सिद्धांत सब राष्ट्र चेतना संवैधानिक मूल संग गहीर रूप में जुड़ल गेला सा खनाल सामाजिक न्याय समानता प्रति सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलन। मंत्री खनाल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामी झा ने संसद के रोस्टम से दलित समुदाय संग मंगने माफी के सामाजिक न्याय प्रति की प्रतिबद्धता के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कलन। संबोधन के क्रम में प्रधानमंत्री खनाल नेपाल के संविधान कानून के दृष्टि में समानता सुनिश्चित करबाक संगे सब प्रकार के विभेद के निषेध कैने ऐतिहासिक रूप में सीमांतकृत समुदाय के लिए समानुपातिक समावेशिता के व्यवस्था कैने बतौलन। नेपाल जातीय विभेद उन्मूलन संबंधी महासंधि सहित 7 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संबंधी महासंधि के पक्ष राष्ट्र रहल उ जानकारी दिलन। सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा बाढ़ तथा भूस्खलन के कारण अवरुद्ध नेपाल टेलीकॉम के दूरसंचार सेवा शीघ्र पुनः संचालन में आना लेल निर्देशन दिलन। संचार मंत्रालय के सचिव राजेंद्र प्रसाद पौड़ेल नेपाल टेलीकॉम के प्रबंध निर्देशक संगीता पहाड़ी आर्याल लगायत नेपाल टेलीकॉम के उच्च व्यवस्थापन संग आय मंत्रालय में भेंट भेल विचार विमर्श में संचार मंत्री डॉक्टर तिमिल सिन्हा बाढ़ तथा भूस्खलन से टेलीकॉम के टावर आ साइट में पहुंचल क्षति अवरुद्ध दूरसंचार सेवा अखन धरि के पुनर्स्थापना प्रगति तथा बाकी काज के संबंध में विस्तृत जानकारी लेने विचार विमर्श में वो प्राकृतिक विपत्ति के कारण संचार सेवा अवरुद्ध भेला से प्रभावित नागरिक उद्धार तथा राहत में खटल गेल सुरक्षाकर्मी सरकारी निकाय तथा अन्य सरकार वाला निकाय के सेहो कठिनाई होइत आयल संचार सेवा पुनः स्थापना के लेल उच्च प्राथमिकता में राखन निर्देशन दिलन। वो तत्काल विद्युत आपूर्ति पहुँचाल नहीं जा सकते तेहन स्थान में वैकल्पिक उपाय अपना के बावजूदो सेवा संचालन में आना टेलीकॉम व्यवस्थापन के निर्देशन दिलन। विचार विमर्श में नेपाल टेलीकॉम के प्रमुख संचालन अधिकृत प्रेम प्रसाद सिलवाल बाढ़ तथा भूस्खलन के कारण टेलीकॉम के विभिन्न साइट में पहुँचल क्षति आ सेवा पुनः स्थापना के लिए भ रहल काज के संबंध में जानकारी करौलन। निर्वाचन आयोग पद मुक्त कने धौंसा के 4 वड़ा अध्यक्ष के यथास्थिति में रही के काज करबाक लेल सर्वोच्च अदालत आदेश देलक अछि। आदेश संगे हुनका सबके वड़ा अध्यक्ष के जिम्मेवारी में रही के काज कर के बाट खोजल अछि। सर्वोच्च के आदेश पश्चात मिथिला नगर पालिका वार्ड नंबर 2 के बिहारी महतो शहीद नगर नगर पालिका वार्ड नंबर 8 के तनुक लाल कुशियत विदेह नगर पालिका वार्ड नंबर 6 के जयराम मंडल आ कमला नगर पालिका वार्ड नंबर 5 के शिवा पासवान के वड़ा अध्यक्ष के जिम्मेवारी में रही के काज करबाक बाट खुजल। सर्वोच्च अदालत जारी कने आदेश में निवेदक सब दल त्याग कने व अन्य दल में प्रवेश कने तथ्ययुक्त तथा मनासिब अधिकार तत्काल नहीं देखल गेल लिखल अछि। अदालत निर्वाचन आयोग महानिदेशक के कार्यालय तथा अन्य विपक्षी के कानून बमोजिम प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाब पेश करबाक लेल आदेश देने अछि। बाढ़ आ भूस्खलन के कारण संघीय राजधानी काठमांडू जोड़वला प्रमुख सड़क बंद भेला से यात्रु तथा यातायात व्यवसायी मार्का में पड़ल अछि। यातायात व्यवसायी के दैनिक लाखों टका बरौरी के क्षति भ रहल बतौने अछि। सब दिन सवारी साधन के भीड़ भाड़ रहवला बीपी राजमार्ग बाढ़ आ भूस्खलन के कारण अखन सुनसान बनल अछि। बर्दीवास स्थित जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय के निरीक्षक बाबूराम कार्की के हिसाबे 4 दिन से बीपी राजमार्ग में दूतर्फी यातायात संचालन होबय नहीं सकल अछि। राजमार्ग के खुरगोट भकुंडेबीसी खंड सोम दिन सेहो बंद छल। बीपी राजमार्ग में आसिन 9 गते से नियमित आवागमन बंद रहल अछि। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास से सुनि रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।